0: geval. Ik doe mijn srishtra panai melane ki koshish karo. Jaise dadi ko yaad karte hai na, kyun yaad karte ho? Uski visheshta sabko apnapan diya hai na, aise sabhi ko apnapan diya na, to kyun aap sabhi nahi kar sakte ho? Jaise sabhi ne anubhav kiya hamari dadi hai, aise nahi Madhuban ki dadi hai. हमारी ऐसे सभी ब्रह्मांड एक दो में अपनापन अनुभव कर, ये दादी को याद कर. इसी को याद कहा जाता है समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद. ठीक है ना? हर एक यही सोचो, सब अपने हैं, अपनापन महसूस. ऐसे नहीं, ये तो पता नहीं कौन है, क्या है, एक परिवार है ना. दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया. तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते फिर भी अपनापन दे सकते. ये दिल की
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक वाणी, दूसरा स्व, शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूप।
3: Awesome.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगा, जैसे देखो मक्खी आती है, मच्छर आता है, ठहरने देते हो, फौरन उड़ा देते कि बैठने देंगे। अच्छा मच्छर पले आओ, कोई भी समस्या

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

Servus.

Sangam Yoga.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: रोज अमृत वेले जी करो, मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र है या चल रही है, पहुंची जाएंगे हो ही जाएगा, ऐसे संकल्प तो नहीं रखते। तीव्र पुरुषार्थ ही बनो, पुरुषार्थ ही तो है, लेकिन चेक करो तीव्र पुरुषार्थ ही है। बाप दादा को प्रिय कौन लगते हैं? तीव्र पुरुषार्थ चल रहे हो, ये लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना। तीव्र पुरुषार्थ रहना ही है, औरों को भी साथ देना है, ये लक्ष्य है। जिसके दिल में ये लक्ष्य है वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो सभी उठाते। चलो, थोड़ा ठंडा है तो दीवार कर देना, क्योंकि दिन प्रतिदिन माया भी अपना काम करती रहती, लेकिन आप सब बच्चे कौन हो? आपका टाइटल क्या है? माया जीत? कौन माया जीत बनने वाले वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी सभी ने हाथ उठाए। बाप दादा को खुशी होती है कि हिम्मत तो है, हिम्मत दे बच्चे, मदद है बाप तो है। हिम्मत नहीं हारना, बाप दादा का सहयोग पहले, हिम्मत हारा तो सब गया। हिम्मत है तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

y bananas, ahí vine.

Bitch.

progetti.

0: la budget. Pata brigante Yogi. Lekin jai pachatap ke roop mein jai parivartan karne ke lakshya se wo baar baar baar samrti mein aati rehti. इसलिए बाप सभी बच्चों को कहती है, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा को मजबूर होती है ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे ना तो मेरा बाबा के खत्म कर दो, अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा सुनो, पाप और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, रोब क्यों? क्या कहती है, अगर आप भी होते ना,

0: ได้ชนะเทศได้กันนะलेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Straight up, man.

Smrti ka sveta.

Pocho Kakil.

वर्णन भी कर रही है, सोच भी रही है।

जरूरी, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी बहुत अच्छा, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। Oh,

Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप लोग छोड़ने में तो जय भाई जय बहने, जो बीने में थे विशेष परिवार निर्विघ्न हो, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी करते हो, लेकिन खास परिवार के उन्नति के लिए और यज्ञ की कारोबार आगे आगे बढ़ते जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना। कोई भी सरकमटेंस वो सभी के योग से, सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी हो।
4: यूथ विंग के लिए भी 1 करोड़ की एप्लीकेशन दिया हुआ है।
3: अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाएगा, सोचेंगे ना ये करूं नहीं करूं नहीं करूं करूं, मैं टाइम नहीं रहता। आजकल समय है, अगर आप सभी शुभ भावना एक संकल्प रखो, होना ही है, हो सकता है। ये वरदान है, दिल बड़ी और कायदे सर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा को। सभी का एक ही संकल्प हो, होना है, क्यों क्या नहीं होना ही। तो इस विधि से सब सहज होता है।
4: सोनीपत की भी 2 दिन के बाद डेट है कोर्ट में, भी हो जाए।
3: बस 10 मिनट आप सब निमित्त बने हुए आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है, सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा, हो जाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहती है God is truth। सबसे प्यारी चीज सच्चाई, क्यों जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई रहती है। So

सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, जिसमें सच्चाई होगी ना उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों, बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप की याद जो

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: से आप सबको मुबारक दे रही है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कल से नहीं, आज से, अभी से, सारे दिन में दोनों बाप से प्यार, तो कभी अपने को निराकार बाप समान, निराकारी स्थिति में अभ्यास करो। फॉलो फादर, और कभी फरिश्ता बनकर साकार रूप भ्रमण नहीं, भ्रमण तो हो ही, लेकिन फरिश्ता रूप बन कर्म भले करो, लेकिन कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में रहो, तो कर्म का बोझ प्रभाव नहीं डालेंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो ब्रह्मा बाप ने कर्म सब किया, निमित्त बना, लेकिन कितना बोझ था ब्रह्मा बाप के ऊपर। आप कोई के ऊपर इतना बोझ नहीं है, है कोई ब्रह्मा बाप से ज्यादा किसके ऊपर बोझ है, जिम्मेवारी है, वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता। तो ब्रह्मा बाप ने इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्य में कैसे रहा, कर्म में भी फरिश्ता रूप रहा ना। तो आपका भी ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो कभी फरिश्ता रूप में रहो, कभी निराकार स्थिति में रहो। ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कह के ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ, और शिव निराकार बाप को याद कर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये कर सकते हो, कर सकते हो कि मुश्किल है, जो कर सकते हैं बीच बीच में, बीच बीच में ऐसे करें जो लगातार हो जाए। ये अपने कर्म के हिसाब से जो आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से फिक्स करो। कम से कम सारे दिन में 12 वाड़ी फरिश्ता बनो, 12 वाड़ी निराकार स्थिति में स्थित रहो। ये कर सकते हो, हाथ उठाओ, कर सकते हो, मुश्किल नहीं है ना, नहीं, सहज है ना, सहज है, सहज में हाथ उठाओ, सहज है। अच्छा, करना है, करना है, ये पक्का करो, फिर तो जो लक्ष्य रखा है ना इस सीजन के अंत तक परिवर्तन हो सकता है। अगर ये ड्रिल 24 टाइम करेंगे तो लगातार हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ, हो सकता है, हो सकता है। तरफ से आप सबका भी यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दें, मुक्त करें। उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते, तो इन्हों को मुक्त करो। क्योंकि पाप आया है ना तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना, आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना, उनको भी वर्षा तो देना है ना। उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए ये ड्रिल करो, 24 वाली, 24 घंटे है, रात और दिन के 24 घंटे, और 24 बार करना। नींद, नींद के टाइम नींद भले करो, बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो, लेकिन दिन में भराओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, अब माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई का खेल होता है ना, देखा है क्या? देखा है? देखा है? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं, तो सब समझो कि ये कुश्ती का खेल रही है। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साखी होगा खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं, कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बातें ऐसे होती हैं जो अज्ञान काल में नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान के बाद होगी। अज्ञान काल में कभी बिजनेस जो पर नहीं हुआ होगा, अज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, ज्ञान छोड़ते हैं, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए समझो, तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियां के अनुभवी शक्ति न्यारपन नष्ट हुआ और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है के लिए आप सीख लो। तो ये परिस्थिति, ये तो पाठ पढ़ाने आई है। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है, ये कपड़ा तो है मारो अच्छी तरह से। घबराने पहले से ट्रस्टी है, सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब पाप के हवाले

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जिसको भी जो देखे ना, ऐसे लगे ये कौन मेरे सामने आ गए। देख देख के खुश होता रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: बच्चों से कभी भी दूर नहीं रह सकते। जैसे बच्चे बाप से दूर नहीं रह सकते, तो बाप भी बच्चों से खुश है, मुबारक भी देते हैं कि अभी हर एक समझे कि मैं इस
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते, संबंध संपर्क मिला सकते। मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत मिलती हो तो फरिश्ता रूप में जैसे ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े, ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा कर सकते। फरिश्ता बन के ये अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा

0: Mike. Jag kan garantera att jag kan inte ta på någon man och många. Du ska göra jättekar. Gäll. Alla vill att man bina rupa med dig. Koi bort rail rupa kap i alla vill att man dig. Ek shabd alla pehle ban ka karan sab chalta hai kyun ka saakar mein to har ek ke har aram ko koi dekh nahi sakta saakar brahma bhi साकार में नहीं देख सके लेकिन अब व्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सके जो गया हुआ है कि परमात्मा की हजार आंखें लाखों आंखें हैं लाखों कान हैं वो अभी
1: क्यों
0: son adeye. Yok çao ne çao. Zabardast bhi aapko banana to hai. Aur aapko banana to padenge. Aaj to rasat suna diye. Kyunki aap log plan bana rahe ho. Ye karenge, ye karenge, ye karenge. Lekin karan ka nivaran nahi hoga. Temporary ho jayenge. Phir koi baat aayenge na kahenge. Baat hi aisi thi na. Karan hi aisa tha. Mera hisab kitab hi aisa hai. Isliye banana hi padega. Manzoor hai na.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल की मुरली

7 गए, 8 बढ़ाए, इसलिए अटेंशन बढ़ाए तो टेंशन संत

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी पाप दादा सभी बच्चों के चेहरे सदा सवालों, साखर में कितना कचरा डालते हैं, डालने वाले को वो कचरे के बदले कचरा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो मास्टर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे। माताओं को सहज चाहिए ना, बाप दादा यही सब माताओं को बच्चों को कहते हैं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं तो और दूसरों से भी दुआएं लो, चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद दुआ भी दे,

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: जीवन में करनी है। दृढ़ता पूर्वक करनी है। करेंगे, तैयार है, हाथ उठाओ। कुछ भी पेपर आवे, लेकिन चार बातें अपने जीवन में करनी है। पक्का, पक्का, पक्का, पक्का। पीछे वाले पक्के है ना? कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। एक बात सदा शुभ चिंतक, कोई की कमजोरी देख वा सुना, चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही। इसको कहते हैं शुभ चिंतक।
1: स्वमान अमृत
0: sirenesi. Vierat sankalapme.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी भी सच्चे दिल के सने में शिवार

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वर्तमान समय

तीसरा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी बहुत आप लोगों का काम पड़ना है। ये नहीं सेवा कर ली, भाषण कर लिया, फर्क को चला लिया, नहीं बहुत सेवा रही हुई है। अभी तो मनसा द्वारा सकाश देने का काम करना है। जैसे शुरू शुरू में शिवा ब्रह्मा में प्रवेश हुआ तो घर बैठे कैसे सकाश दी, किसको साक्षात्कार हुआ, किसको आवाज आया फलाने स्थान पर जाओ, किस पर प्रेरणा आई सुन करके मुझे जाना ही है, बाकी आई ना। और जो शुरू में आई वो कितने बाकी है, याद करते हो ना दादी को, दूसरी भी दादियों को याद करते हो ना। तो जो शुरू में हुआ वो अभी अंत में भी रिपीट होना है, इसलिए अपने मनसा शक्ति को, मनसा सेवा को बढ़ाओ। उस समय भाषण आपका कोई नहीं सुनेगा, कोर्स कोई नहीं करेगा, हालत ही गंभीर होगी। मनसा सकाश देने का सेवा करनी पड़ेगी, इसीलिए अभी अभ्यास करो। अमृत वेले सिर्फ नहीं, भले कर्म कर रहे हो लेकिन बीच बीच में माइंड को कंट्रोल करके सब तरफ से एकाग्र हो करके सकाश दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, इसकी ट्रायल करो। बहुत आवश्यकता होगी। आकर दुखहरता सुख करता आपके चित्र भी बनते हैं। तो क्या चेतन में नहीं बनेंगे? अंतर्मुखी होके बीच बीच में 5 मिनट निकालो। अमृत वेला सिर्फ नहीं है, दिन रात ये अभ्यास चाहिए। रात को आंख खुलती है, ट्रायल करो, फिर जाके भले सो जाओ लेकिन थोड़ा टाइम ट्रायल करो। और काम के लिए भी तो उठते हो ना, तो ये अभ्यास भी करो, तभी आपकी पूजा होगी, नहीं तो आपकी पूजा नाम मात्र होगी। बड़े बड़े मंदिर नहीं बनेंगे, चालू मंदिर बनेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रियलिटी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितने चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती। उस चमक की रियलिटी पर्सनल
2: बने हो, देवताएं बने हो। अच्छा,
1: पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, है ना बढ़िया कुमारियां बैठी है ना। रॉयल्टी है ना आपकी, फिर अंत में संगम युग में भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेड के पर्दे पर मिकी माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते, मिकी माउस का खेल देख मनोरंजन करते। माया के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न मिकी माउस के रूप में

0: किया भी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार आत्माओं के प्रेत रैम दिल बनो। आजकल
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्राह्मण परिवार का अर्थ है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का सब कुछ हो गया। बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है, चारी बातों में निश्चय विजय आवश्यक। परिवार भी सभी को कई बातों में मस्त

0: subtle faretia escalladgar exo atki mala socho ka ek number aur ka exo atwa number kyo bana sab ek number kyo nahi bana 16000 kyo bana karan varieti sanskar ko samajh knowledge full pan chal चलना तो पड़ना ही है, परिवार को छोड़ के कहाँ जाएंगे, नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार, बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार से चलना यही परिवार के निश्चय होती विजय की निशानी 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से इसलिए जो परिवार में पास है सब में पास।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: That

0: ऐसे नहीं देखना, देख के बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना, कोई बढ़िया गिफ्ट होती है उसको बार बार देखती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्म योगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज कर। अच्छा, गिफ्ट ली गिफ्ट दी, अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो तीन रूपों से Chat.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।